அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு உம்மீத ரமதே சிட்டுல் ராத்ரு சூல் குஷாலா ठीक ठाक है दुश्मन पर मजूर पकुंदन की बे दिस रसूख जमंगा प्रोग्राम और जमंगा आवाज हुरी द टुलुडी रिजात मन न कुमडी रिजात शुक्रिया दा कुमा सफंगड़ो शोर का वरत हर कले स्टडी मशी पखिर आली हम वायमा अल्लाह दी उगी चटोला था गबिन जबिन ये बख्तवरी है पर जवन पर मजूर पकुंदन के

अच्छा जी सुबह पखेर गुड मॉर्निंग यानी सहर मुपखेर संगमंगा चल ले वाणी वाला टांग वाला वक्सा जन मुखरमान दे हर के लिए निमिश रातने को दासी मका वही गुनाया

अच्छा वाणी वाला हाय वाणी वाला रवि शेखा आकना तासु गरे बेदा सेकना मैसेज नु मुने निष्ठा खा बिल्कुल खामोशी रे सासु मैसेज नु रावल के शाब शाब शाब है सम देर मैसेज नु आओ कालनो बचकम दे खबर उस्ताद जानसरा देजरा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान आचकम दे प्रोग्राम दे आगे के अखलमा बल संग जिता सुत पता दा देजरा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान चिकम आउटस्टैंडिंग और कम बिल्कुल जी द टूल ना एडवांस के बुक शुवे प्रोडक्ट दे अगी तो लिखी देजरा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान आचकम दे अमेजिंग विटामिन सी पे स्वास्थ्य

0: Keşi. Gul sangi gul. Nu bazı uhtan süre çıkım deykena. Gulum sansuma. Audari sangam sansuma. İni tan süre bilkul çi gul sangi sansuma.
1: Gul sangi gullo.
0: और गुल सांगे नो बस तो भी बिल्कुल जीता तो खल कोई गुल सांगे और तुम शाइस्ता नुम दल एकदम अकना को आगा बता नज सासूम जी आगा बत मेहनत के आगा बत दिस ना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान से कम द कुदरती जड़ बूटना तैयार करे शिवे कम आ प्रोडक्ट थी आगा बत राउडी आगा बत इस्तेमाल है लगा विद दौड़ दागी द इस्तेमाल ना तुम रखरी जट्टा चिकम दे अगिसल हो मुमकिन

या चार करक रेडियो 88.4 टांक रेडियो बांधे और या चिकम देनो अटक रेडियो बांधे और तो फ्रेंड रुनो ता चिकम देनो वेलकम को महा प्रोग्राम मरे सताज हम चिकम देनो और इतर 11 बजे पूरे सही था खबर इधर होड़ी रे ज्यादा दिखियो मेलमा सरनास्ते और मेलमा चिकम देनो जमुंदा पराडे ज्यादा चिकम देनो

0: प्रोग्राम खबर है संदर है तुस भी आ सकते वे काल आंदी पई है लेकिन देख दे काल चाहने है। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चो खबर है के बची हूँ टांग ना खबर है के चरंगा शाये बराबर है स्कूल वाए माशाल्लाह माशाल्लाह चो फरमाइश दे रवड़े दे चेरे गाना माना बवार वे
1: वज पखले में दरता हुएला।
0: हाँ वज पखले में दरता हुएला दा गाना भाई चलो जी दोस्तों एफएम रेडियो 88.4 अमन रेडियो टांग दी आवाज है काल आंदी पे देखण क्यों केरा भाई है केरा दोस्त है। हेलो
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम मेरा सोना मीठा बिरा हाल लेव जी कोणी में किथु ही वे
2: नेमत लाला खैर
0: ओ अल्लाह खुशियां दे भी आबाद हो में हाल लेव अपना नाम तो दसोने आ
2: कोट
0: अला दाद दी चू शुएब कोट अला दाद को अल्लाह खुश रखे शुएब ते को अल्लाह खुश रखे प्रोग्राम सुन दे पे वे
2: प्रोग्राम सुन दे पे अबू मैं संती दा के
0: जी जी केरा करे ने को ना मीठा को ना ता दस जा
2: एक दिन रियाज है तो एक दिन चौधरी है
0: रियाज ते चौधरी को मैं दा दुआ सलाम दे ते एफएम रेडियो 88.4 अमन रेडियो टांग दी तरफ इना कोई खुश आमदीद
2: वालेकुम सलाम ई साहब दोरा सो ऐसे
0: जी देख ना दसो गुलुकार दा ना दसो गर्मी शर्मी तो कुछ हाल गई मैडम मिठू
2: गर्मी लगी गई है रोटी तो प्रोग्राम बनाई थे
0: हाँ माशाल्लाह सोबत है
2: सोबत है
0: ओ जी ओ खुश रहो सोबत है के टेम वाला बनाई पावे नाले वसली होसी या चटनी मटनी है के कोनी
2: वसाल
0: आ वाह वाह वाह नसीब थी ने अल्लाह खुश रखे आबाद रखे आओ बंदियाल दा गाना सुन दिया जी आओ जी सोबती पकाई पहनते सोबती खावे नाले नाले बंदियाल को सुने आओ बंदियाल को रल के सुन दिया

नो मार्केट देर नदीम कॉस्मेटिक स्टोर दे द सर तमाम देश में प्रोडक्ट मिलाई है तगबई के कम खाइन दिनों जमा आवाज जरूरी नुपट बाबा दे जोंग टावर सर बिल्कुल निजदे जासिम दुकानदार दे जासिम एंड ब्रदर दे पट बाबा की जोंग टावर सर बिल्कुल निजदी सुपर मार्केट की जासिम दुकानदार सरदेश में तमाम प्रोडक्ट मिलावी जी हेलो मोस्ट वेलकम माय डियर ब्रदर हाउ आर यू आई लाइक योर शो आई लाइक योर स्वीट क्यूट अमेजिंग वॉइस ऑन ओके फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 90.80 सुलेमान नूर एंड जुबेदा नूर कवल नूर फ्रॉम ब्यूटीफुल नेशर आई लव

0: महल किरण जैसे खिलता हुआ नूर
1: द ब्यूटी के स्टे विद अस।
2: रोजाना 4 से 5 बराहे रास्त स्टे विद अस।

जनाब आप मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, और जनाब केसन के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसमें ब्यूटी क्रीम्स हैं, फेस वॉश हैं, साबुन हैं। हमारा हेल्थ के हवाले से मैं बात कर रहा था आप लोगों के साथ, क्योंकि हेल्थ के बहुत सारे मसले हैं जिनको लेकर लोग बहुत परेशान होते हैं और फिर उसी के मुताबिक वो ढेर सारे खर्चे कर रहे होते हैं, क्योंकि हर बंदा सेहत का मुतलाशी होता है। तो हमने भी कुछ प्रोडक्ट बनाए हैं ऐसी बीमारियां जो कि बहुत ज्यादा कॉमन हैं हमारी सोसाइटी में, और उनके इलाज हमने ढूंढे हैं जड़ी बूटियों से, कुदरत के खजानों से हमने कुछ चीजें बनाई हैं। जैसे कि आपको हमने इंट्रोड्यूस करवाया कि हमारे पास जोड़ों के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए, पट्टों के दर्द के लिए, फालिज लकवा से मुतासरा हिस्से में फिर से जान डालने के लिए, या ऐसे बच्चे जो चल फिर नहीं सकते या जिनको आसाबी जो है जिस्मानी कमजोरी है, वो हमारे शिफाय दर्द ऑस्ट्रिच ऑयल यानी कि शुतुरमुर्ग के तेल को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह उनके पट्टों के अंदर जान आएगी, उनका दर्द खत्म होगा और जड़ से खत्म होगा। 700 रुपए का हमारा ये ऑयल है जनाब, जिसे बोलते हैं केसन शिफाय दर्द, ठीक है जनाब, हासिल कर सकते हैं। कल आपको हमने बताया कि जनाब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है लोगों के अंदर मोटापे का होता है, सो मोटापा जो है बहुत बड़ी मुसीबत है, और मोटापा को खत्म करने के बहुत सारे नुस्खे लोग आजमाते हैं, बहुत सारे कामयाब होते भी हैं, नहीं भी होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये फार्मूला इस वक्त बहुत ज्यादा पॉपुलर है। आज भी सुबह मुझे पहाड़पुर में जो है एक दुकानदार की कॉल आई और वो कह रहा था कि भाई 2 दर्जन 15 दिन वाली फक्की और 1 दर्जन जो है महीने वाली भेज दें, यानी कि एक एक दुकानदार आप 2-2 दर्जन हमसे ये प्रोडक्ट मंगवाता है, केसन वेट कम पेट कम, जो कि वजन कम करने वाली फक्की है।

आपके पेट का पेट की चर्बी पिघलाती है और आपको स्मार्ट बनाती है। ठीक है, इसके हवाले से कल हमने आप लोगों के साथ डीपली बात की है और उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि ये किस तरीके से काम करती है और इसको खाने का तरीकाकार क्या है। फिर मैं बताता चलूं कि ये जो वजन कम करने वाली चर्बी को पिघलाने वाली हमारी पक्की है, आपने 2 चम्मच रोजाना खाने हैं, 1 चम्मच खाली पेट पानी के साथ और 2 चम्मच रात को खाने के बाद। सबसे पहले तो ये आपका हाजमा ठीक करेगी, आपकी भूख बैलेंस होगी और उसके बाद जनाब आपकी जिस्म से इजाफी चर्बी पिघलकर आपके यूरिन के थ्रू पास होना शुरू हो जाती है। आज एक और जनाब हमारी हेल्थ की प्रोडक्ट है जिसका आपके घर, अगर मुझे आप सुन रहे हैं तो आपके घर के अंदर कोई एक फर्द ऐसा होगा जो इस मर्ज में जरूर मुब्तला होगा। ठीक है, अल्लाह ताला उनको शिफा दे। और ये शिफा का हमारा शिफा की जो प्रोडक्ट है ये मैदे के अमराज के लिए है, मैदे के लोगों के लिए है जिनको मैदे का बहुत ज्यादा मसला रहता है। मैदे के मसले वैसे होते क्या क्या है, जो अमराज होते हैं मैदे के जनाब, उसमें जो सबसे बड़ा मसला होता है जनाब, उसे हम कहते हैं जी बदहजमी। ठीक है जनाब, बदहजमी ये होती है कि आप कोई भी चीज खाते हैं, आपका मैदा प्रॉपर तरीके से उसको हजम नहीं कर पाता है। यानी कि जब आपका मैदा सही तरीके से तेजाबियत नहीं बनाता, ठीक है जनाब, वो सही तरीके से प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता, तो आप जितना भी खाते हैं वो खुराक जो है छोटे छोटे जरात में तकसीम नहीं हो पाती है, वो बहुत देर तक आपके मैदे के अंदर ठहरी रहती है। यानी कि वो जिसके अंदर तेजाबियत होती है वो इनसफिशियंट होती है, जिसकी वजह से आपको बार बार मसला होता है, खुराक खाने के बाद आपके हलक को वापस आती है। ठीक है जनाब, आपने सोबत खाई, आपने चावल खाए, आपने गोश्त खाया, वो बार बार चीजें जो है आपके हलक को आपके मुंह को वापस आ रही होती हैं और ये प्रोसेस जो है तकरीबन 2-3 घंटे तक रहता है ऐसा प्रोसेस। अगर आपको ऐसा मसला है कि आप खाने के बाद जब आप पेट भर के खाना खा लेते हैं और उसके बाद आपको ये वाला मसला रहता है कि जनाब खुराक आपके बार बार मुंह को आती है, इसको इसो जो है रिफ्लेक्स इसोफेगस रिफ्लेक्स एक्शन इसको कहा जाता है, कि यानी कि मैदे से चीज वापस आपके मुंह को आ जाती है और वजह क्या होती है कि आपके मैदे के अंदर जो तेजाबियत है वो इनसफिशिएंट है और आपका मैदा जो है वो चीजों को पिघला हजम नहीं कर पा रहा और 2-2.5 घंटे तक आप इसी सर्कल के अंदर रहते हैं कि चीजें आपके मुंह को आती हैं और बहुत बुरा भी लगता है, साथ वाले भी इरिटेट होते हैं। तो भाई ये बदहजमी है। ठीक है जनाब, इसके लिए आप हमारी ये प्रोडक्ट जो है केसन का हाजमा कंट्रोल सिरप, हमारे सिरप का नाम है सिरप, ये पीने वाला है जिसका नाम है हाजमा कंट्रोल सिरप, केसन हाजमा कंट्रोल सिरप, इसका नाम याद रखिएगा। ठीक है जनाब, और इसकी कीमत 180 रुपए इसकी कीमत है, आप खरीद सकते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम होते हैं आपके मैदे के मसाइल, जैसे कि ये एक मसला मैंने आपको बताया है कि बदहजमी, मैदे में बोझ होना। ठीक है जनाब, एक और मसला है जनाब, मैदे के सीने के अंदर जलन, ये बहुत ज्यादा लोगों को होता है। ये जो पहला मैंने आपको मसला बताया है ना बदहजमी बोझ, ये भी कुछ लोगों को होता है, लेकिन इस वक्त हमारी सोसाइटी में तकरीबन 70-80% लोगों के अंदर ये जो है जनाब, जिसको हम एसिडिटी कहते हैं, एसिडिटी, ठीक है जनाब, तेजाबियत इसको कहते हैं, कि जनाब जैसे आप खाना खाते हैं आप अपने सीने को मल रहे होते हैं, यानी कि कह रहे ये क्या हो गया, सीने के अंदर जो है आपको फौरी तौर पर जलन होने लगती है। ठीक है जनाब, जलन होती है तो इसकी वजह क्या होती है, इसकी वजह ये होती है कि जब आपके, यानी कि पहला जो मसला मैंने आपको बताया है बदहजमी का, कि आपके मैदे के अंदर जो तेजाबियत है वो कम है, जिसकी वजह से आपका मैदा हजम नहीं कर पा रहा और आपको साथ ये प्रॉब्लम है। दूसरा मसला ये होता है कि आपके मैदे के अंदर तेजाब ज्यादा है, ठीक है, तेजाबियत ज्यादा है और जैसे आप खाना खाते हैं और खुराक जैसे आपके मैदे के अंदर जाती है तो वही तेजाब जो आपके मैदे के अंदर होता है ना, मैदे के अंदर तेजाबियत होती है, ठीक है ना, ये जो आपका हाजमा होता है उसी तेजाब की वजह से होता है जो आपके मैदे के अंदर पाया जाता है, वही तेजाब जो होता है ना आपकी खुराक की नाली को आ जाता है। ठीक है जनाब, अब जो खुराक की नाली का अंदर से स्ट्रक्चर है, जो मैदे के अंदर से स्ट्रक्चर है वो टोटली मुख्तलिफ है। ठीक है जनाब, जो मैदे का है वो डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, तो यही तेजाब जब आपकी खुराक की नाली को ऊपर आती है तो आपको सीने में जलन शुरू हो जाती है। वो सीने में जलन नहीं होती बेसिकली, वो खुराक की नाली के अंदर जो है जलन हो रही होती है और आप बोलते हैं कि मुझे तो भाई सीने की जलन का मसला हो गया है। तो जनाब इस सूरत हाल में भी आप हमारी ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो आपके मैदे के अंदर जो तेजाबियत है
उसकी मिकदार जो है बैलेंस हो जाएगी। ठीक है जनाब, ये बहुत बड़ा मसला होता है। इसके अलावा जो है अक्सर लोगों को कब्ज रहती है बहुत ज्यादा, ठीक है जनाब, कॉन्स्टिपेशन जिसको कहते हैं, कब्ज की वजह से भी मोटापा हो जाता है। ठीक है जनाब, कब्ज कॉन्स्टिपेशन की वजह से ही आपको मोटापा भी हो जाता है। तो जनाब आप हमारा ये कब्ज की अगर आपको सूरत हाल है, ठीक है जनाब, या फिर आपको खाना खाने के बाद तेजाबियत का मसला है, सीने में जलन का मसला है, या फिर आपको गैस हो जाती है खाना खाने के बाद, तो क्या कर सकते हैं कि आप इस सिरप को अपने पास रखें। यानी खाना खाने के बाद अगर आप दो ढक्कन दो चम्मच इसके लेते हैं या एक चम्मच भी लेते हैं, तो जनाब आपके जो ये मसले हैं, ये गैस, उफारा, इस तरह के मतली, ठीक है जनाब, आंतों की सोजिश या पेट में दर्द वगैरह अगर हो, तो पेट के दर्द के अंदर भी ये बहुत ही जबरदस्त हमारी प्रोडक्ट है। नेचुरल और बिल्कुल जी एडवांस फार्मूला है। इस वक्त जितने भी मैदे के अमराज के सिरप मौजूद हैं जनाब मार्केट में, ये उन सबसे एडवांस फार्मूला है। एडवांस होने के साथ साथ इसके अंदर जो चीजों की मिकदार है, केसन हाजमा कंट्रोल सिरप के अंदर जो चीजों की मिकदार है, जो इंग्रेडिएंट इसके अंदर डले हुए हैं, वो क्वांटिटी में ज्यादा है। यही वजह है कि हमारे पैक के ऊपर लिखा होता है कि एक से तीन चम्मच आप लें काफी होगा। यानी कि बाज सिरप होते हैं ना, उसके ऊपर आपको दो दो निशान लगा के देते हैं, भाई दो सुबह, दोपहर, दो दोपहर, दो शाम का पिए। हमारा जो सिरप है वो इतना पावरफुल है, हाजमा कंट्रोल सिरप, कि इसको आप एक चम्मच भी अगर 24 घंटे में लेंगे ना, तो आपके मैदे का मसला हल रहेगा। यानी कि सिर्फ एक चम्मच या एक ढक्कन पीने की सूरत में, एक चम्मच पिए, ढक्कन ना भी अगर चम्मच से चीजें इंटेक किया करें तो बेहतर होता है। एक चम्मच अगर आप ले लेंगे तो भाई 24 घंटे में आपका मसला हल रहेगा। अच्छा, आप सोच रहे होंगे क्या ये वक्ती तौर पर असर देगा? नहीं, आपकी बेसिकली मैदे के अंदर जो है ये प्रॉब्लम जब होते हैं, तो एक जरासीम होता है जिसको बोलते हैं एच पायलोरी। एच पायलोरी

0: सोच सोच के चल मना इथे पैर पैर ते रोड़े ने तेनू नंदन वाले।
1: जी जनाब, ये खास किस्म का जरसीम होता है एच पाइलोरी। जब ये आपके मैदे के अंदर मौजूद हो, ठीक है जनाब, उससे जब ये मौजूद होता है तो अंडे देता है, आपके वहाँ पर प्रोडक्शन को और खराब करता है, अपनी तादाद बढ़ाता है, जरसीम बढ़ते हैं, और जब तक ये किल नहीं होता ना, ठीक है जनाब, जब तक ये जरसीम है, ठीक है जनाब, तो इसको एंटीबैक्टीरियल तरीके से भी खत्म किया जाता है। आपको जो है इंजेक्शन ड्रिप भी लगती है एंटीबायोटिक की, पीपीआई की ड्रिप्स भी आपको लगती हैं, या फिर एंटीबैक्टीरियल टैबलेट भी आपको खानी पड़ती हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारी जो दो प्रोडक्ट हैं, वेट कम पेट कम फक्की और हमारा जो हाजमा कंट्रोल सिरप है, ये उस जरासीम को खत्म करने के लिए इंतहाई काबिल दोनों चीजें हैं, और बहुत जल्द आपके मैदे से वो जरासीम खत्म हो जाता है। तो जनाब, इस जरासीम को, एच पाइलोरी को खत्म करने के लिए, जरूरी नहीं है कि एक दिन में खत्म हो जाए, आप ये सिरप इस्तेमाल कर रहे होंगे उसी के दौरान जो खत्म हो सकता है, लेकिन जैसे ही उस जरासीम का खात्मा होता है आपके मैदे की सूरत हाल जो है एकदम से ठीक हो जाती है। बहुत ही प्यारी प्रोडक्ट है हमारी इस वक्त मार्केट में। यकीन कीजिए कि सिरप बहुत ज्यादा महंगे हो चुके हैं, कंपनियां 400-400 रुपए का एक सिरप बेच रही है, 400-400 रुपए का, ठीक है जनाब, 450-400 रुपए का। लेकिन हम आपको कहते हैं कि केसन का हाजमा कंट्रोल सिरप एक दफा लीजिएगा हमारे कहने के ऊपर, सिर्फ एक दफा, उसके बाद आपका मैदा, आपका जिस्म और आप खुद मजबूर होंगे कि आप अपने घर के अंदर इस सिरप को रखें, जो आप ड्यूरिंग सफर, अगर आप कहीं पर सफर पर जा रहे हैं और ऐसा बंदा कि जिसको उल्टियों का खदशा होता है तो वो सफर से पहले 2-3 इसकी चम्मच पी ले तो इंशाल्लाह उसको उल्टी भी नहीं आएगी। तो जनाब, केसन का हाजमा कंट्रोल सिरप एक बहुत ही इफेक्टिव हमारी प्रोडक्ट है। वैसे तो हमारी कंपनी जो है ब्यूटी प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है जनाब, हमने आगाज ऑयल और शैम्पू से किया, और हम ये चाहते हैं कि अगर हमारी कंपनी को टेस्ट करना हो ना, ठीक है जनाब, हमारी कंपनी को देखना हो कि भाई इस कंपनी की चीजें कैसी होंगी, इसका स्टैंडर्ड, इसका मयार, इसके रिजल्ट कैसे हैं, तो हम कहते हैं भी हमारा ऑयल और शैम्पू खरीदिए आप, ठीक है जनाब। प्राइमरी प्रोडक्ट है हमारी, और सबसे पहले हमारे माहरीन, हमारी कंपनी ने जो चीज लोगों के लिए बनाई वो केसन हेयर ऑयल, और उसके बाद केसन शैम्पू जो है हमने तैयार किया। तो जनाब, ये केसन ऑयल और शैम्पू भी मौजूद है, अगर आपको बालों का मसला है, बाल आपके गिरते हैं, आप यकीन कीजिए कि जो केसन हेयर ऑयल है इसके अंदर 17

जी जनाब, इस वक्त आप मुझे तीन रेडियो स्टेशन से एक साथ सुन रहे हैं। यह है केसन नेचुरल पाकिस्तान का प्रोग्राम डेरा इस्माइल खान में। आप मुझे सुन रहे हैं इस वक्त ग्लोबल FM 91 की लाइव फ्रिक्वेंसी के ऊपर, पहाड़पुर में रेडियो पैगाम 97.4 की फ्रिक्वेंसी के ऊपर, और टांक में रेडियो अमन 88.4 जी जनाब 88.4 की लाइव फ्रिक्वेंसी के ऊपर। और हमारा नंबर, हमें ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारे नंबर 03449363366 के ऊपर, और 03137985457। दो नंबर आप लोगों के लिए हमारे एक्टिव हैं, एक टेलीनॉर का नंबर है 03449363366, और दूसरा हमारा नंबर है जनाब जोंग का 03137984554। आप लोगों के मैसेजेस हमारे साथ मौजूद हैं, आलिया बक्खर से हमारे साथ मौजूद हैं और हमें मैसेज करके हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं। इनके प्रोग्राम, इनके मैसेज को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। और टांक में हमारे प्रोडक्ट आपको कहाँ मिलते हैं? टांक के अंदर जो है सदाम प्लाजा है जनाब, सदाम प्लाजा जो ट्रैफिक चौकी है टांक के स्टार्ट के अंदर, वहां पर मौजूद है सदाम प्लाजा, और वहां पर है हाजी जरबत खान का सेटअप जिसे मंसूर जनरल स्टोर कहते हैं जनाब, और वहां पर आप हमारे सारे प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। ये हाजमा कंट्रोल सिरप, ये शिफाए दर्द, ये जो है वेट कम पेट कम फक्की, ये ग्लूटावाइड क्रीम, ये जाफरानी क्रीम, ये लवली फेस वॉश, ये गो पिंपल फेस वॉश, ये मिल्की सोप, ये जाफरानी सोप, ये ग्लूटा सोप, सब कुछ आपको वहां पर मिलेगा। और टांक वालों के लिए हमारी स्पेशल ऑफर चल रही है बिस्मिल्ला पैकेज, और बिस्मिल्ला पैकेज ये है कि आप लोग जब बिस्मिल्ला कर रहे हैं केसन के ऊपर तो हम आपको गिफ्ट दे रहे हैं कि बिस्मिल्ला कीजिए केसन नेचुरल पाकिस्तान की, 1000 रुपए के प्रोडक्ट खरीदिए, और 1000 की चीजें खरीदने के ऊपर आपको 500 रुपए की दो चीजें हम आपको फ्री दे रहे हैं, और ये ऑफर सिर्फ टांक वालों के लिए, पहाड़पुर और डेरा के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि नया नया हमने शहर ओपन किया है टांक, तो वहाँ के लोगों को हम अपने ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स जो है वो इस्तेमाल करवाना चाहते हैं। तो जनाब आप 1000 रुपए की कोई भी चीजें खरीदेंगे मंसूर जनरल स्टोर सदाम प्लाजा से, तो वहां पर दो चीजें आपको फ्री दी जाएंगी, एक जाफरानी साबुन और दूसरा जो है हमारा परफ्यूम है जो कि पेन परफ्यूम है, जो आप जेब में रख सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं, ट्रैवलिंग परफ्यूम है। दो किस्म की हमारी खुशबू है, एक अकबर और एक जारा। अकबर जो है वो मर्दों के लिए है और जो जारा है वो खवातीन के लिए है। तो आप मंसूर जनरल स्टोर से हमारे प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं टांक में। इसके अलावा अफसर खान प्लाजा की सारी दुकानों के ऊपर केसन के प्रोडक्ट मौजूद हैं, अलबदर मार्केट पुरानी सब्जी मंडी के साथ वहां पर तमाम दुकानदारों के पास हमारे प्रोडक्ट मौजूद हैं, और इसके अलावा डबरा में भी तमाम दुकानदारों के पास केसन के प्रोडक्ट मौजूद हैं, और इसके अलावा मंसूर जनरल स्टोर जो कि जनाना जनरल स्टोर है मोहल्ला शादी खेल। ठीक है जनाब, जो खवातीन मुझे इस वक्त सुन रही हैं, ठीक है जनाब, जो मंसूर जनरल स्टोर है इनका फीमेल का भी सेटअप है, अगर बाजार खवातीन नहीं जा सकती तो मोहल्ला शादी खेल अमा खेल, ठीक है जनाब, मोहल्ला शादी खेल अमा खेल में जनाब इनका ये जनाना स्टोर है, तो आप यहाँ से भी हासिल कर सकते हैं। डेरा इस्माइल खान में सुन रहे हैं तो जनाब गुलशन कैश एंड कैरी पर आपको सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है जनाब, इसके साथ साथ जो है अमान हरसेरा फारूक हरसेरा ये गला के साथ जितनी दुकानें हैं, अमान हरसेरा फारूक हरसेरा, ठीक है ना, फैमिली शॉपिंग सेंटर, ठीक है ना, इसके अलावा गोमल मार्केट के अंदर जो है अलफरीद कॉस्मेटिक मबरूका है, शीश महल है, ठीक है जनाब, साथ में अलफरीद कॉस्मेटिक इनके पास आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। गुलजार मस्जिद के सामने विकी कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी पॉइंट वाले भाई हैं जनाब, उनके पास केसन के सारे प्रोडक्ट होते हैं। इसके अलावा डेरा इस्माइल खान के अंदर ही हाजी गुल जनरल स्टोर बाकरी बाजार, राजा जनरल स्टोर बाकरी बाजार है, तोपा वाले बाजार के ऊपर जो है इरफान दवा खाना है, और फौजी द खोका जी जनाब वहां पर भी आपको केसन के सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। और इसके अलावा स्टेशन रह गया हमारा जनाब जो है पहाड़पुर का, तो जनाब पहाड़पुर में भी हर जगह आपको हमारी प्रोडक्ट्स मिलती हैं, हर जगह पर मिलेंगी, और पहाड़पुर में पहाड़पुर में अगर आप रंगपुर के ऊपर हैं तो हैदर मेडिकल स्टोर

0: हैदर मेडिकल स्टोर, नियाजी मेडिकल स्टोर और जमील नियाजी। ठीक है जनाब, जमील नियाजी रंग पुरोडा के ऊपर है, उसी के साथ है हसीब जनरल स्टोर, तो आप वहां से भी हमारे प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। और पहाड़पुर शहर के अंदर जनाब जीशान जनरल स्टोर, नवीद जनरल स्टोर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड साथ में ताज महल, एंड साथ में बिस्मिल्ला फहीम भाई के पास, इन सब के पास आपको हमारे प्रोडक्ट मिलते हैं। यानी कि जहां जहां हमारी आवाज मौजूद है, केसन के सारे प्रोडक्ट्स लाखों रुपए की मालियत में आपके इलाके के अंदर मौजूद है। आलिया सुन रही हैं, आलिया कैसी हैं आप? बख्तर में अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल जी ठीक हूँ, आप सुनाएं आप कैसी हैं? कल शो नहीं सुन सकी भाई, आज सुन रही हूँ भाई। मेरे मोबाइल का स्पीकर खराब हो गया है, आवाज का मसला बन रहा है। जनाब मोबाइल को जरूर ठीक कराइएगा, क्योंकि अगर स्पीकर ठीक नहीं होगा तो फिर आप लोगों को अपनी आवाज कैसे सुना पाएंगी, आप हमें अपनी आवाज कैसे सुना पाएंगी। हमारे साथ फर्स्ट कॉलर मौजूद हैं जनाब, इनको मौका दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम खलील भाई, क्या हाल है
0: जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। शबीर उस्ताद हमारे साथ मौजूद है, कैसे है मोहतरम
1: जी? अल्लाह की मेहरबानी है सर, प्रोग्राम सुन सकते हैं चार तीन जितने माशाल्लाह प्रोग्राम करें।
0: अच्छा जी, अच्छा मैं भी चाहे उत्ते तले थी में दिया, अच्छा मैं भी मेरे को नींद पहुंची, फिर तू सब पीती बैठे हुए माशाल्लाह जी।
1: ऐसा तो फिक्स ये ले थोड़ा पहले सियारा तानिन ना मशहूरी होने में पसंद है, चाह गुरक्षी जी वंजू ते नाल आखिर तक आ जानी थोड़ी थोड़ी चाह ते उन प्रोग्राम की तवज्जो।
0: अच्छा जी, यानी कि नूह मजे इकट्ठे खिंदे पे आउंदे इन टाइम में तुसा
1: जी जी। तो एक तो सिग्नल का मसला थोड़ा से माशाल्लाह जरा हाजमा कंट्रोल थी गया, वेट कम पेट कम थी गया, ते शुगर दर्द ये लाजमी है सारे।
0: स्पेशल असान गाल करने बैठे हाजमा कंट्रोल सिरप देते कि हर घर की जरूरत है। सही,
1: बिल्कुल बिल्कुल, घर घर की जरूरत है, क्योंकि इंसान जरा मैदा है इंजन है, अगर इंजन ठीक न हो तो कभी चल नहीं सकती। मसला मेन जरा कमावना ही है, खाना ही है।
0: ठीक है जी,
1: खाण जरा ना खाना साडे मारे बने, ऐसा खाने के मारे न बने, थोड़ी इया इतिहास करो जो एक थोड़े जरा ना खाने जो उपका ज्यादा ओवर लोड करें पेट के बीच, जिसकी वजह को जरा ना तकलीफ थी है, तो खाना साडे मारे अल्लाह पाक ने नियमत बनाइए, लेकिन उस नियमत को इतनी जो असा इतना खाऊं जो खाना असा खाने के मारे न बन वनू इया थी वन साकू खाना भी बने, तो असा ओवर न खाऊं जरा सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो उतना खा जो चंद निकाले चंगे रांधे जो तू जो है ना उसको उसको रोक दे हाथ को, हक लाल दखन अगर कोई मसला थी भी हो हाजमा कंट्रोल वे सारे सारे निजाम को चाहे असाम खालिफ चाहे खादी बैठे होंगे इसको कंट्रोल करेंगे, और सारी मेदे की जलन थी वेंगी क्योंकि ज्यादा मिसाल जाती उसको बच नहीं सकते, क्योंकि चढ़ गए अगर मिसाल न सकू तेज मिर्च वही नुकसान है, लेकिन चढ़ इस किस्म के गए जो थोड़े नमक घट हो गए या मर्च मिसाल वाले पत्ते असा न गतू तो सोबत करारी थी नहीं हो, तो असा इस चल गए तो वाती फिक्र न करो, अगर हाजमा कंट्रोल है तो हर चीज को खत्म कर रहे, ये लाजमी है, ये बर्फ कर रहे सारे मेदे को जख्म को खत्म कर रहे, जेडी शय खाओ एतदाल न खाओ ते हाजमा कंट्रोल पीओ, बिल्कुल बेफिक्र थी के बिल्कुल खाओ जितनी खाओ, लेकिन जरा ना हाजमा कंट्रोल लाजमी हो, अच्छा जरा ना सारे बारे बहु अच्छा एक नियमत लिखती है पैसा दी, एक वेट कम पेट कम ते शिवाय दर्द भी है, ते बाकी जरा ना जितने भी चाहे सो पीन अच्छे सफाया जरा खासकर सफाया दर्द हाजमा कंट्रोल तो वेट कम पेट कम ये असलू जरूरियात बन चुकी है, इन त्रै छाया सारे मारे जरा ना ये बहुत मसले जी वजह को त्रै छाया लाजमी घर के बीच रखो, खासकर जरा हाजमा कंट्रोल लाजमी है, जो रात को कई वाली तकलीफ थी सकती है, तो एक घर की पी तो डॉक्टर की जरूरत नहीं, रात ही चल रही तो माशाल्लाह मेरे सेट रहा है। बाकी साबिर दर्जी साहब का कोई सलाम देना पे इस टाइम सुनता पे पंजाबी मेरा दोस्त है, मेरे पंजाब के बहुत भी पाऊ दोस्त थी, लेकिन साबिर दर्जी को डिग डिग सलाम, लूना सेट अल्लाह करे वाला है, तो उसकी बहुत शिद्दत ना लता कमी महसूस करेंगे, मैं अमजद कुरैशी थी गया नजर हसन से, बाकी सारे सुनो सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहु।
0: बहुत शुक्रिया, और हर घर की जरूरत है जनाब, घर घर की जरूरत है। केसन हाजमा कंट्रोल सिरप कीमत में कम है, रिजल्ट में बहुत ही इसके जबरदस्त रिजल्ट हैं। और आप एक दफा अगर आपके घर में ये सिरप आ जाता है, ठीक है जनाब, ये हाजमा कंट्रोल सिरप, तो आप हमेशा इसे अपने पास रखेंगे। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम।
2: वेलकम बैक स्टडी वाशे।
0: जनाब क्या हाल है, ठीक ठाक है? अब्दुल हादी देख गिनो सही, बस कुछ दीवारा सा गुलो हर के सुजान वैसे। अल्लाह तो शुक्र है, ठीक ठाक। कितना हवा चुलते वे देवे, कितना वे देवे, मौसम चंगा है तुम्हारे पास टांगदा या गर्मी है?
2: माशाल्लाह ना गर्मी ना पता लगता सर्दी का
0: ना करो, इतना चंगा मौसम है टांगदा।
2: हाँ
0: माशाल्लाह इंतजार मौसम चंगा बना। अच्छा मौसम चंगा, आज बात ऐसा तो नवी शायद इनके बारे में सुना आवे पहले?
2: नहीं नहीं ऐसा
0: गरीब भाई नवे नवे गालियां देखो, हर गाल ऐसा तो नवी प्रोडक्ट नवे गालियां देसो। आज मजे दे गालियां कीते से तो नल के मैदे दा मसला कितना खतरनाक होंदा है, ते हर घर ही छे ते सस्ता इलाज असा केसन दे तरफों तोक देंदे पए सई।
2: बहु मजे दे गाल दसी ने एक दोस्त को, मैं आखा आयो मेरा दोस्त थोड़ा मोटा है ना।
0: अच्छा जी ठीक है,
2: मैं के पक्की आओ इंशाल्लाह तुसा को शिफा मिलवे सी।
0: हाँ बिल्कुल ना काकू को इस्तेमाल करो, वो तो वजन कम
2: गंदा लगता ना।
0: हाँ मोटा बंदा कितना चंगा लगता है, घर ना को नहीं चंगा लगता थे है जी?
2: ना ना कोई हर कोई आके मोटा कितना रहना भी
0: मोटा कितना रहना भी बिल्कुल ही नहीं होता है, मोटा दुश्मनी ना हो ऐसे ही दुश्मनी कमजोर हो गए
2: तो ये कमजोर होने ना।
0: अच्छा चलो ठीक है, लेकिन वो तो चलो कल दी गाल है, आज सारी नवी गाल है जो भाई हाजमा अगर खराब हो तो सारा केसन दा हाजमा कंट्रोल सिरप है जरा तुसा पीसो इंशाल्लाह 24 घंटे च एको ढक्कन ही पीसो तो तुम्हारे 24 घंटे मैदे जलन नौ सी इंशाल्लाह। चलो इंशाल्लाह बस सुनते वो सारी तबलीग सुनते वो तो अगुते फैलांदे वो ठीक है हादी भाई। चलो ठीक है, बहुत मेहरबानी, कोई सलाम दुआ
2: सारे
0: सुनने वाले को सलाम। ठीक है ठीक है जनाब, अब्दुल हादी हमारे साथ रेगुलर हमारे लिसनर बन चुके हैं जनाब, अभी हमारी बातों को सिर्फ सुन रहे हैं। हाँ जी

ठीक है ना। अब दिलराज कह रही है कि मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, तो मेरी बहन कीजिए रिक्वेस्ट, आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए हम बैठे हैं। आज जाना रिक्वेस्ट भेज दीजिए, देखते हैं उसको ओवरव्यू करते हैं। कहते हैं आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और सब सुनने वालों को सलाम। मोहम्मद अजहर जो है, मोहम्मद अजहर कहाँ से मौजूद है? पहाड़पुर से हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अजहर जी। भाई कैसे हैं? पहली दफा आए हैं, इनका मैसेज जो है वो आज पहली दफा फ्लैश हो रहा है मेरे पास, तो ये फर्स्ट टाइम हमारे शो में आए, तो इनको डेढ़ जरा वेलकम वेलकम टू केसन टी टाइम। और जी जनाब, आप लोग चाय पी रहे थे तो मेरी भी चाय आ चुकी है इस वक्त। जनाब सलाम खलील अवान साहब, कैसे हो? आरजे निसार मसूद नहीं आया आज। अच्छा जी, निसार ने आना है लेकिन उसने हमें ज्वाइन करना है ग्लोबल एफएम 91 से, ठीक है जनाब, स्टूडियो से ज्वाइन नहीं करना। तो वहां पर अभी थोड़ा सा टेक्निकल मसला है कि आवाज जो है वो सही नहीं जा रही दूसरे सेशंस के ऊपर, उस मसले को हल कर रहे हैं हम, ठीक है जनाब। और वो मसला जैसे हल होता है, आज हल हो जाए, कल हल हो जाए, जैसे हल होता है, तो निसार जो है भाई आपको जरूर ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ एक और नामी गिरामी नाम, नामी गिरामी नाम

0: शुरू कर दिया माशाल्लाह आपने ना?
1: अभी तक मुझे मिला नहीं, अभी उसे फोन किया था, अभी मैं घर में हूँ। वो 2-3 बजे आया है टांग से, उसका दर्द मेरे पूछी थी मेरे दोस्त का सारे का बोले इसका तरीका क्या है पकी का, किस तरह इस्तेमाल करेंगे जी?
0: पकी को पानी के साथ इस्तेमाल करना है, 1 चम्मच सुबह खाली पेट, खाली पेट नाश्ते से पहले।
1: अच्छा,
0: नाश्ते से बिल्कुल पहले खाली पेट, जैसे कि सुबह की नमाज पढ़े ना फजर की नमाज, तो उसके बाद ले लें, उसके बाद आप पानी के साथ 1 चम्मच ले लें आप, ठीक है। और दूसरी जो है ना, आपको रात को खाने के आधे घंटे बाद, जैसे रात का खाना खा लें तो उसके बाद जो है आधे घंटे के बाद 1 चम्मच और ले लें, दोनों पानी के साथ। ईशा की नमाज यूँ समझ लें, एक फजर की नमाज के बाद और एक ईशा की नमाज के बाद, ये तरीका पानी के साथ आपने लेना है, ठीक है जनाब?
1: ठीक है,
0: ओके जी, बहुत शुक्रिया आपका जनाब, थैंक यू सो वेरी मच जी।

जी जनाब, अब मुझे इस वक्त तीनों स्टेशन से एक साथ सुन रहे हैं। पहाड़पुर में भी मौजूद, नौमी मजबूर हमारे साथ मौजूद हैं। और नौमी मजबूर क्या कह रहे हैं, सलाम कह रहे हैं जनाब। और तला किंग भी मौजूद हैं क्या जी, सलाम कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। और बहुत मजा आ रहा है, ठीक है जनाब। और बहुत नौमी मजबूर कहते हैं कि बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है जी, और पुरानी यादें ताजा हो रही हैं। कौन सी यादें यार जी।

जी जनाब, केसन की वेट कम पेट कम हर्बल फक्की जनाब आपको स्मार्ट बना सकती है। और हम मैसेज पढ़ रहे थे किसका, बल्कि मैं इस वक्त थोड़ा सा फ्लाइट मोड लगा लेता हूँ, मैं इनके मैसेजेस जल्दी से पढ़ लूँ, टाइम हमारे पास कम होता है जनाब। और दुरे अदन, मेरा दिल करता है मैं एक परफ्यूम बनाऊं जिसका नाम हो दुरे अदन। ठीक है जनाब, हमारे ऑलरेडी दो परफ्यूम मौजूद हैं, अकबर एंड जहरा, दो परफ्यूम मौजूद हैं। जहरा के नाम से एक परफ्यूम हमारा मौजूद है, नाम की तरह खुशबू बहुत प्यारी है खवातीन के लिए स्पेशली। ठीक है जनाब, छोटा परफ्यूम इसका 250 रुपए का है, बड़ा 1600 रुपए का है। ठीक है जनाब, उसके साथ अकबर है, अकबर भी छोटा 250 रुपए का है, बड़ा 1600 रुपए का है। एक और अब हम परफ्यूम लॉन्च करने जा रहे हैं जनाब, रुखे जानान। ठीक है जनाब, और वो हम देखते हैं कि वो बड़ा लॉन्च करते हैं या छोटा। और दुरे अदन मेरा दिल बहुत करता है, ये नाम मुझे बहुत प्यारा है, जन्नत के दरवाजे का नाम। तो हो सकता है दुरे अदन भी हमारा परफ्यूम आ जाए। ठीक है ना, जिस फील्ड में हम कदम रखते हैं फिर उसको डे बाय डे बढ़ाते रहते हैं। तो अरूबा वफा फातिमा यानी कि दुरे अदन कहती है, द यूजर ऑफ ओनली केसन प्रोडक्ट। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम उस्ताजी, माशाल्लाह शो इज वेरी बेस्ट एंड प्लीज उस्ताजी अपनी जगह किसी को मत दिया करें, हजारों आवाजें भी सुनाई दे ना आपकी आवाज की और अल्फाज की मिठास किसी के अंदाज बयान में नहीं हो सकती। यू नो आई लव फॉर योर वॉइस। ठीक है जनाब, कहते हैं कि मैं आपकी तर्जमा यही है कि मैं आपकी आवाज से बहुत प्यार करती हूँ। तो वो हमने आरजे को निसार भाई बहुत काबिल एहतराम है, और पश्तो लैंग्वेज की वजह से जो है, क्योंकि ये प्रोग्राम यहाँ से टांग को जा रहा होता है तो पश्तो जरूरी है। अच्छा जी, अब्दुल हादी हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। तेरी जात अजीम है रब सोना, तेरा जिक्र करेंदा खुश थी ना, तेरी जात तारीफ दे काबिल है, तेरी हमद लिखे ना खुश थी ना, तेरे हुक्म ते जिन जान कुर्बान करा, मदनी ते दरूद भेजे ना खुश थी ना, उन्हीं शाकिर बनी हुई हर शय ते सुभान अल्लाह आकदा ते खुश थी ना। मकसद बस क्या बात है जा, बहुत जबरदस्त। सिरम शहजादी पहाड़पुर से हमें सुन रहे हैं, भाई मैं शैम्पू, अच्छा जी, ऑयल और ग्लूटावाइट क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। भाई हमें कैसे पता चलेगा कि जो केसन के ओरिजिनल प्रोडक्ट हैं, प्लीज बता दें। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह पहाड़पुर के अंदर हमारी गहरी नजर है हर दुकान के ऊपर, और गहरी नजर है हमारी के हर चीज को हम चेक कर रहे होते हैं भाई कि कहीं पर कोई दो नंबर चीज ना है। तो इंशाल्लाह हमारी हमारी टीम की भरपूर कोशिश होती है कि हम चेक एंड बैलेंस रखें, और कोई भी दो नंबर ही अगर कहीं पकड़ी जाती है तो उसे रिमूव करा दें एरिया से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आप बेफिक्र होके जहां से भी आपको प्रोडक्ट मिलेंगे केसन के, वो ओरिजिनल प्रोडक्ट ही होंगे इंशाल्लाह। सलाम भाई, कैसे हो भाई, आपकी आवाज मुझे आपकी आवाज अच्छा जी, आवाज बड़ी प्यारी, मुझे आपकी आवाज बड़ी अच्छी लगती है। वैसे आपके शो भी मस्त हैं, मैंने आपकी क्रीम लगाई थी। लगाए तो भी इस्तेमाल करती है ना, इंशाल्लाह आपको डिजायर रिजल्ट भी मिल जाएंगे। सब सुनने वालों को मेरा सलाम। एंड ये है रोनी खानू खेल से, रोनी हमें सुन रही है। ठीक है जनाब, रोनी रोनी को वेलकम करते हैं, ये पहाड़पुर से हमें सुन रही हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर खलील सावान साहब, सलाम टू ऑल लिसनर्स, आपका प्रोग्राम बहुत जबरदस्त है और केसन की क्या शान है माशाल्लाह, खुदा पाक मजीद तरक्की आता फरमाए। नियाज हुसैन शाह शबीर अहमद शबरा भाई को स्पेशल सलाम, और नजर हसन फ्रॉम कच्ची कारगढ़। ठीक है, प्लीज इश्क दा बंदा जी, देख लें, आपके दिल की बात सुन ली मैंने।

0: रेडियो 88.4 डार्किंग नशीला हमारे साथ रहिए, हमारे साथ रहिए।
1: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है, वो जो कुन फयकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।

0: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जो कुन फयकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा, हमारे साथ रहिएगा।
1: देख आकर कूचे चाके गिरेबां में कभी, कैस तू लैला भी तू सहरा भी तू महमिल भी तू।

सुपर 342-311-2292 इश्मा हरियो प्रोडक्ट अपना नंबर लिख के दे व्हाट्सएप पे होम देखता सो मत पोर्ट से बंदी मैसेज केवल वाली प्रोग्राम के मैसेज रीड केवल वाली रीड जाता आसान तरीका देखा बस व्हाट्सएप पे लार्ज जमा नंबर पे और कई और मत ओ कई मैसेज डायरेक्ट बदले मैसेज रीड को बस सिंपल नंबर बने होम ता सो मत मैसेज केवल शे 0342-311-2292 हां प्रोग्राम से नंबर सो गुरु हां श्याम द काल सर बरुस्त गुरु Assalamualaikum Inam bhai kaise hain aap bhai welcome to the show Ishma beautiful show bhai main bhi aapka program sun rahi hoon mashallah program bahut acha chal raha hai it's been nazish from town

हर ये भाई किस्मत का पता चलेगी उमरा किस कह लिया हमने तो अपना इश्मा हर्बल आयल की 34 कोपन वहीद भाई के साथ जमा किया हुआ है माशाल्लाह। अल्लाह जी उस्ताद हो लेगी, हाँ बाकी तो किस्मत खबर ही सहीदा, अल्लाह जी उस्ताद हो लेगी सहीदा इंशाल्लाह, पता किस्मत खबर ही चार चलेगी और खोयो ना यो पकम खाम खा बलेगी हाँ सहीदा अल्लाह जी की जबरदस्त अच्छा किस्मत भी मुजाही दू लगी और पता किस्मत खबर ही तुम शुक्र बोले इंसान बगे इंसान बगे कम दे के इस समय शिक्षा बोले और ज्यादा कूपन ही हुई और पजरगाओ या पसलाओ नो यो कूपन दास के मखले वर्ष इंसान अल्लाह से रावली मुदागुर किस्मत दे पगे हाँ टोले खबर दी किस्मत दी हाँ संग इनाम लाला सने मखा बीमारी मरी मिटिक दवाई जर रुमे सयम इनाम लाला संग ही प्रोग्राम में उसान को हाँ खदियो कल खान शुक्र जदक करेंगे हाँ को सही था।

इज अ मैसेज कि हुआ खैर दे रहा हां बिल्कुल धन्यवाद हां सही है बिल्कुल धन्यवाद कश्माला वाई सलाम उन के बिल्कुल इज मी कश्माला फ्रॉम चारसद हमारी नाम जाना जबरदस्त प्रोग्राम दे रवान देता ते सलाम टू द सलाम अस्सलाम वालेकुम प्लीज टपी वगन आलिया